वापस आ गए हैं स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो 88.9 विन एफएम ते प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न तुहाडी अपनी होस्ट एंड दोस्त तनु दे नाल। वेला आ गया है तुहाडे नाल हमेशा दी तरह एक कहानी सांझी करन दा। अज दी जिहड़ी साडी कहानी है उहदा नाम है खुशियां वाली दुकान। एक शहर विच एक बजुर्ग दी छोटी जी दुकान हुंदी आ। दुकान दे बाहर उसने एक बोर्ड लिख के लाया हुंदा जिस दे उत्ते लिखिया हुंदा इत्थे खुशियां मिलदियां ने पर पैसे नाल नहीं। लोग लंघदे बोर्ड पढ़दे ते हस पैंदे ते अगे तुर जांदे। एक दिन एक बजुर्ग उस दुकान विच आया। बजुर्ग दे नाल गल्लां करदा एक नौजवान कोलों दी लंघिया ते उसने उन्हां दियां गल्लां सुनिया ते उसने बुजुर्ग नूं पुछया, बाबा जी एक किहो जी दुकान है, खुशियां भी कितें विकदियां ने? बुजुर्ग मुस्कुराया ते बोलिया, हाँ पुत मिलदियां ने, दस तैनूं किन्नी खुशी चाहीदी है? मुंडा हस के कहिंदा, बाबा जी मैनूं तां बहुत सारियां खुशियां चाहीदियां ने, एक चंगी नौकरी, वड्डा घर, महंगी गड्डी ते बहुत सारे पैसे। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है पुत पर पहला मेरे तीन सवालों के जवाब दे। मुंडे ने कहा, पुछो बाबा जी। पहला सवाल, ये दस तेरे को फोन केड़ा है ते किन्ने दा है? मुंडा बोलिया, 1.5 लाख दा। ते आखरी बार इस फोन तो किसे अपने नू बिना काम तो कदों फोन लाया सी? ता मुंडा चुप हो गया। दूजा सवाल, तेरे कोल गड्डी केड़ी है? हाँ जी बहुत वड्डी गड्डी है। फिर आखरी वार किसे इंसान नू कदों लिफ्ट दित्ती सी जिसनू सचमुच मदद दी लोड़ सी? मुंडा फिर चुप रहा। तीजा सवाल, पुत तू दिन च किन्नी बार हसदा है? मुंडा कुछ सोच के बोलिया, बाबा जी सच दसा तो याद ही नहीं कि आखिरी बार खुल के कदों हसया सी। बुजुर्ग ने एक छोटा जिहा खाली डब्बा कढ़िया ते मुंडे नू फड़ा दिता। मुंडा हैरान होया, बाबा जी ये तो खाली है। बुजुर्ग बोलिया, नहीं पुत इस विच तेरियां खुशियां ली जगह है। पर खुशियां आउणगियां कित्थों? बुजुर्ग ने कहा, अगले 7 दिनां नूं तू 3 काम करी, किसे एक इंसान दी बिना किसे मतलब दे मदद करी, किसे अपने नाल दिल खोल के गल करी ते हर रात सौण तो पहला वो 3 चीज़ां याद करी जिन्हां लई तू शुक्र गुजारी। मुंडे नूं ये गल अजीब लगी पर उसने सोचा, कोशिश करके देख लैना आ की पता कुछ हो जावे। अगले दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त नूं फोन किया जिस नाल कई सालां दियां गल्लां अधूरियां रहिंदियां कीतियां ते दोवें जाने पुरानियां गल्लां याद कर करके बहुत हसे। दूजे दिन उसने अपने गुआंढ विच रहिंदे एक बजुर्ग दा समान चुकण विच मदद कीती। तीजे दिन उसने काम तो घर आके फोन एक पासे रख दिता ते पूरे परिवार नाल बैठ के खाना खादा। हौली हौली उसनू महसूस होया कि उसकी जिंदगी कुछ बदल रही है। 7वें दिन वह दोबारा दुकान ते गया। बुजुर्ग ने पूछया, हाँ पुत खुशियां मिलियां? मुंडा मुस्कुराया ते बोलिया, बाबा जी कमाल हो गई, ना मेरी तनखाह वधी, ना वड्डी गड्डी आई, ना कोई वड्डी लॉटरी लगी, पर फिर भी मैं पहला नालों किते ज़्यादा खुश हाँ। बुजुर्ग हसया ते बोलिया, पुत खुशियां कदे दुकाना ते नहीं मिलदियां, खुशियां तो सदा साडे अंदर हुंदियां ने, बस इन्ना नू असी लभण लई सारी दुनिया विच घूमदे फिरदे रहने हाँ। मुंडे ने अपना खाली डब्बा खोलिया जिस विच अजे भी कुछ नहीं सी, पर हुण उसनू समझ आ गई सी
कि हर कीमती चीज़ हत्थां विच फड़ी नहीं जा सकती, कुछ चीज़ां सिर्फ दिल विच महसूस होंदियां ने। अज असी सारे जिंदगी विच एक दौड़ विच लगे हुए हाँ, जिथे हर किसी नूं कुछ ना कुछ चाहिदा है। किसी नूं वड्डा घर, वड्डी नौकरी, बहुत पैसे, जॉब च प्रमोशन या कामयाबी, तो यह सुपने देखने बिल्कुल गलत नहीं। पर सवाल यह है कि इन्हां सुपनों नूं पूरा करन दी दौड़ विच असी अज दी खुशी तां नहीं गुआ रहे किते। खुशियां दा कोई पता नहीं हुंदा ते ना ही इन्हां दा कोई बाजार हुंदा है। जे छोटियां गल्लां विच हसना सिख जावे उस तो वड्डा कोई अमीर नहीं हुंदा। तो याद रखो, हैप्पीनैस इज समथिंग यू क्रिएट अलोंग द वे। ते अज असी एक चैलेंज लैंदे हाँ कि किसी एक इंसान दे चेहरे ते मुस्कुराहट जरूर लियावांगे। हो सकता है कि उसकी मुस्कुराहट तुहाडे अपने दिन नूं भी खूबसूरत बना देवे, क्योंकि जिंदगी लंबी होण नाल नहीं खुशियां नाल भरी होण करके खूबसूरत बनती है। उम्मीद करते हाँ कि अज की कहानी तुहानूं पसंद आई होवेगी। सुनदिया एक गीत ते फिर करांगे कुछ होर गल्लां बातां तुहाडे नाल सांझियां। आओ सुनदिया गीत।